गोविंद ना भजै अहं बुध माता जन्म जुए ज्यों हारे। नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे। छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे। कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे। मोढ़े वस्त्र का

ताती भावना लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। नो हार्म कम्स टू देम हु आर अंडर वाहिगुरुज प्रोटेक्शन। ऑन ऑल फोर साइड्स इज माई लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। आई हैव मेट द परफेक्ट लॉर्ड हु इज द क्रिएटर। He has gifted me with the balm of Lord's name, and I have enshrined love for Him within myself. The Preserver has protected me and cured me of all my ailments. The Lord has taken me under His wings and has become my protector.

अपना काम भूल गए। जे राजे की मालिश कर ए ना गया राजा इन सजा देवेगा। ता परमेश्वर ने आप सहन नाई का रूप धारे। लोग कहते नहीं

नमो श्री भगवती बढ़ली सरोही। ए शस्त्रां दी पूजा है, जिस वेले योधे रण विच जूझदे ने शस्त्र नू नमस्कार करके शस्त्र दी पूजा उचार देने, वो शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने, भगौती बडैली सरोही, ये नाम हन तलवार दे। शस्त्र दी पूजा है, गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे नमो श्री भगौती।

खंड खड़ग अस्कृपान खंड खड़ग तुप तवर अर्पे अस्कृपान खंड खड़ग तुप तवर अर्पे सैफ सरोही सहरी यही हमारे सैफ सरोही सहरी यही हमारे तीर तू ही सैथी तू ही तवर तलवार तीर तू ही सैथी तू ही तवर तलवार नाम तुहारो जो जमे

संगीत भुजंग प्रयात छंद शस्त्रां दे नाम और शस्त्रां दी पूजा साहब जी संगीत छंद विच गा के दसदे आ कहिंदे संगीत भुजंग प्रयात छंद तागड़दन तीरं

चार ताल दे अंदर यह रीतबद्ध है। इस नूं ध्रुपद ताल भी कहिंदे ने, चार ताल भी कहिंदे, ध्रुपद ताल भी कहिंदे। श्रवण करना

0: चार ताल के अंदर यह जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच इस दे नाल तोड़े और तिहाइयां बजाउणियां पेंदियां ने और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसी सरवण कीता हुण गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निज की, तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हीं की भावत, शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे
1: सेव करो करना निज की जैसे विचार पुजारी, नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर शरण सिधरिए, लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत प्राप्त होए तिहाइए, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, अस प्रभ छोड़ अवर
0: फतेह सतगुरु की। यह जो जंग विच फतेह हुई है यह किसी आदमी की नहीं, यह वाहगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कि खालसे की फतेह चार कूंट विच होएगी, चढ़दे तो लहिंदे तक खालसे की फतेह होएगी और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्होंने अपने शब्द श्रवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे
1: लंक लूट लिया लंक

0: देखो खालसा की फतेह। चार फूट के अंदर
1: रूम नापत बजाओ शाम मोहरा चला। सुनो नंदलाल एहसान प्रगट करूं मैं अपना राज।
0: नंदलाल दे नाल गुरु साहब के वचन हो रहे भाई नंदलाल साहब।
1: सुनो नंदलाल एहसान प्रगट करूं मैं अपना राज।
2: चार वर्ण
1: एक वर्ण कराऊं
0: वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं। चार वर्ण एक वर्ण करा वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं।
2: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
0: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
1: देश खालसे को।

0: इस खालसे को पुर्त जाएंगे देख खालसे को पुर्त जाएंगे
1: एक चरे सिंह
0: झूलन नेगे हस्ती साजे झूलन नेगे हस्ती साजे द्वार द्वार पर नौब झुकाए सवा लाख जब झुके पलीता सवा लाख जब झुके पलीता तबे खालसा उदे

और दुनियादारा की सेवा विच कितना कु फर्क है। दुनियादारा की सेवा करेगा चार पैसे नसीब हो जाएंगे, गुरु नानक देव दास की सेवा करेगा तेरा लोक भी सुखी होगा ते परलोक भी सुहेला हो जाएगा। गुरु नानक दे दर ते आके जिसने भी सिद्क प्यार पाऊं।

पर तेरा अग्गा नहीं सवरेगा, गुरु नानक दे दर दी सेवा करेगा ता तेरा ए लोक भी सुखी होवेगा ते फिर परलोक भी तेरा सुधर जावे। जिसने भी गुरु नानक दे दर ते आके निष्कामता दे नाल सेवा कीती गुरु नानक दे दरों उस दियां चोलियां भरियां गई। भाई आदम जिसने अपने जीवन विच बड़े पीर फकीर औलिया देवतियां दी पूजा कोई भी ऐसा दर नहीं छड़िया जिथे ना गया होवे। किस कामना करके मन विच कामना है भई घर विच कोई बूटा लग जावे औलाद हो जावे। जो भी किसे पीर फकीर ने हुक्म कीता ओ कुछ कीता पर कितों भी मुराद पूरी नहीं हुई। निराश होके आंसू बहांदा आ रहा है ते गुरु का सिख अगू मिल गया।

महापुरखां दी निशानी है। आओ शहर च, ये शहर दा नाम चेते आ गए। नाम जपन वालियां दे दर्शन करके ही सुरत निरंकार दे चरणा नाल जुड़ जांदी है, जीव जपन लग जांदा है। जेड़े नाम विच जेड़े सिमरन विच मन नहीं सी लगदा, अज ओ नाम मिठा लगन लगा। कदों? जदों जपन वालियां दी संगत प्राप्त हो गई। हजूर दा बचन है,

साधु की संगत जपन वाले की संगत विच तन की भी शीतलता प्राप्त होंदी है, मन की भी शीतलता प्राप्त होंदी है। तन के रोग भी कटे जाते हैं, मन के रोग भी कटे जाते हैं जदों जपन वाले की संगत प्राप्त हो जाए। इसे हजूर बाणी में बख्शिश करते नह शीतलन चंद्र देवा। चंद्रमा बेशक सारी वनस्पति नूं रस बख्शदा है, शीतलता प्रदान कर रहा है, पर जे किसी का मन विकारां दी अग विच कलप रहा होवे, सड़ रहा होवे, चंद्रमे की शीतलता उथे ही कम कर सकती। उचारण करो श्री वाहिगुरु। इसे तरह ही बावन चंदन तन तो शीतल कर सकता है पर मन नु शीतल नहीं कर सकता। सर्दी की रुत है, शरीर नु ठंडक मिल सकती है जे मन विकारां दी अग विच सड़ रहा है, उसनु शांति किथे मिलेगी। हजूर कहते हैं नानक शीतलन साध सवजन, जपन वाले की संगत विच जदों तू भी जपेगा सतनाम श्री वाहेगुरु आवे साहिब चित तेरिया भगतां दिथियां, ते फिर की होवेगा मन की कटिए मैल साध।

आनंद सहज तब खेले। गुरु अर्जुन देव पाछा शब्द विच अपने गुरु पिता का शुकराना करते हुए, हे वाहे गुरु, हे अकाल पुरख।

हमेशा ही पुला कर दे हन। पूले बारक अनक लख बरिया, कितनिया तू पुला कर दे है बारक उसकी गिनती नहीं। पर तेरी रहमते लदर तेरी बख्शिश सदा ही रहती है, जदों ही बारक कोई गलती करने लगता है, क्योंकि बारक अनजान है। बच्चा अग नू हाथ पा लेंदा है, उसनू पता नहीं कि मैनू जला देवेगी। पर हे वाहिगुरु, जिस तरह माता पिता उस अग्नि तो बच्चे नू बचा लेंदे हन, चुक के अपने गल नाल ला लेंदे हन, तू भी इसे तरह सानू अपने गल नाल लाउंदा है। चंचल मत बारक बपड़े की सर्प अग्न कर मेरे। बच्चे नू कोई पता नहीं भाई ये वस्तुआं मेरे लिए नुकसान देखन। बच्चा अग नू भी अनजाने हाथ पा लेंदा, सप नू भी हाथ पा लेंदा, पर मां सदा ही उसनू चुक के अपनी गल नाल लाउंदी है, उना खतरियां तो उसनू बचा लेंदी है। हे वाहिगुरु, तू भी इसे तरह मेरी रक्षा करदा है। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी। गुरु अर्जन देव पातशाह अकाल पुरख का शुकराना कर रहे हैं।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी दा आनंद माणिया है। असी आप जी दा ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करदे हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चियां नाल गल बात पंजाबी विच करदे हो ता आप तंता जो हो, जे कुछ कसर है ता अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल ता इह समा उन्हां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे ता गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना ता इक पासे रिहा, और गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे, अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे। हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे, असी ता उस ताते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उनताई है ता ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी ता सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा तुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही ता कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी ता अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया ता मुगल राज दा समा सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाप कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मिया सबना जिया बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मिया बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सज्जना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां

जैसे एक जननी कै होत हैं अनेक सुत, सभी में अधिक प्यारो सुत गोद को, स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत एक संपैना सुहेद को, स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत हेत संपैना सुहेद को।

सदाए पैरी पैपा खाकोए गुरमुख गुरसिख आप गवाए साध संगत पौ पाओ कर सेवक सेवा कार कमाए मिठा बोलन निव चलन हथों दे कै भला मनाए शब्द सुरत लिवलीन होए दरगै मान निमाणा पाए

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरबाणी इस जग में जाना, हर एक सिख का धर्म बनता है कि गुरबाणी की महक और बाबे नानक मनुखी जीवन की फिलासफी जो है वह दूर दूर तक फैलाए। मिशनरी सेवा कीर्तन व्याख्या आदि सिर्फ असी सिख संगतों के कर रहे हैं, गैर सिखा भाई साहब योगी हरभजन सिंह जी महाराज तो इलावा और कोई साडा अपराध इस मिशन विच नहीं दिसदा। दास की आपकी बहुत थोड़ी बुद्धि अनुसार कीर्तन राही कोशिश है कि गुरसंगीत की बेड़ी उत्ते शिंगार के तुर्की बाणी अंग्रेजी व्याख्या विच पेश की जाए। इस ढंग की वरतों नाल यह भी तजर्बा है कि जो सिख बच्चे बच्चिया गुरमुखी गुरसिखी तो अधूरे हैं अते गुरद्वारे आदि घट ही जाते हैं, वो भी इस ढंग विच गुरबाणी पेश की हुई सुन ले तैयार हैं। सो अंग्रेजी की वरतों की खिमा बख्शी।

सूत कलह न कीड़िया तू चब लंगाइए सावन रहन पंभीरिया तू पार बसाइए कुंजड़िया विसाख विच जो जू पर आइए बिन गुरमुक्त न हो वे बिन गुरमुक्त न हो वे।